0: बिम बुमक बिम बुमक बिम बुमक
1: तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा तू जाग जरा तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा तू जाग।

0: तुम्हारा चौकी किधर है?
1: ऊपर वाले कमरे में।
2: सीता डोली में बैठ के सिर्फ राम के घर जाएगी, वरना जहर खा के मर जाएगी। मैं जा रही हूँ राम, मेरे बाद मेरी दीवी निशानी हमेशा याद रखना। आप?
3: One and two and I love you, I love you, I love you.
0: अरे मरी क्या? अरे जल्दी कर, कन्या ने मोकलवा कैच।
4: हम तैयार तो होने।
0: अरे जल्दी कर पन।
2: पंडित जी सीता को बुला रहे हैं।
1: अच्छे वाले क्या आता हूँ?
0: अरे मरी क्या? छोकरी का बाप आ रहा है। अरे जल्दी कर।
5: इनका काम तो हो गया, अब क्या करूं?
0: अबे छोकरी का बाप आ रहा है, उसके हाथ में थमा देना।
5: हाँ
0: छुप जा जल्दी। चलो चलो जल्दी करो, मुझे छुपा ले तेरा बाप आ रहा है।
1: अंकल हमारी बेटी को आशीर्वाद दे दिया।
6: अरे ऐसा दिया आशीर्वाद कि तेरा छोकरी का हो गया घर आबाद और तेरा घर सदा के लिए बर्बाद।
1: जी
6: अरे मेरा मतलब है तेरा दुश्मन का घर सदा के लिए बर्बाद। अच्छा अपन अभी जाता है, लेकिन तू अपन को अक्का जिंदगी याद करेगा, उठता बैठता सोता जागता मेरे को याद करेगा। अरे इसको भी अपना छोकरी समझ कर आशीर्वाद देनी।
1: हाँ जरूर जरूर, जीती रहो बेटी सदा सुखी रहो। अंकल आपकी बेटी को कहीं देखा है? याद आ रहा है कि
4: याद तो आपको क्या कुछ नहीं रहता।
6: गुड आपन चलता है। चल दिक्री साहिब जी।
4: हाँ तो मैं कह रहा था याद तो आपको सब कुछ रहता है, बस यही नहीं कि प्यारे लाल आवारा को भी बुलाना है। अमा हम तो ढीठ शायर है, मुशायरों में पहुंच जाते, ये तो फिर बिटिया की शादी है। मुबारक हो।
1: ये क्या है?
4: संतरे।
1: संतरे?
4: जी हाँ, नेक शगुन के लिए। आधा वर्ष।
1: आधा वर्ष कमाल है, आज जो भी आता है संतरे लेकर आता है। सीता बेटी
6: देखा, साधु भगत सिंह का संतरे का मंटर, तेरा छोकरी हो गया छू मंटर, तारू ग्रैंडफादर।
1: यो पॉल कोगा राजन चौपड़ों से।
5: किसको?
1: और फौज बुढ़े पारसी को और सीता को। डॉक्टर कपूर के घर गए होंगे, जाओ।
5: चलो
1: मैं डॉक्टर कपूर का घर चला के राख कर दूंगा। जिसने मेरी इज्जत पर हाथ डाला है मैं उसके हाथों को भीख मांगने के लायक भी नहीं छोड़ूंगा।